योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: Hey, what's up, man? New York is Nova Brooklyn. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: So, who's going to do what? Flashlights?
4: Nowhere to be found.
3: Emergency supply kits?
5: Not packed.
3: What about blankets?
6: We have an old towel.
3: Cell phones?
4: May not work.
3: Emergency water?
5: Not a drop.
3: Perfect. We all know where we're meeting if we're separated.
6: The library!
4: On Jones' house.
5: The bus stop.
3: And I'll be waiting here wondering where you all are. Great. It sounds like we don't have a plan.
7: Winging It is not an emergency plan. Make sure your kids know what to do during an emergency, who to call, where to meet, what to pack. Visit ready.gov/kids for tips and information. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
8: Hi, I'm Kenny Williams.
9: And Lisa Ray.
8: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy. Using anecdotes, discussions, and interviews, we'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your hosts, me, Kenny Williams,
9: and Lisa Ray.
8: Make sure you listen in on the free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org, the voice of today's generation.
10: 'Cause I ain't no joke.
11: Hi, I'm Dustin Lynch. You don't have to listen to country music to know that life can be full of drama. Some of it you just can't control, like your girlfriend running out on you with your best friend. But there's some drama you can skip.
12: Skip the drama that comes with not having your high school diploma or equivalency. Find free adult education classes near you and finish your diploma. Visit finishyourdiploma.org. That's finishyourdiploma.org.
11: You just need to take that first step and find free classes near you and start moving towards a brighter future and even your college degree.
12: Brought to you by the Dollar General Literacy Foundation and the Ed Council.
13: Yeah, this is Monster the Savage, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. Yeah.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: got more stripes.
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: You can be a hero by being prepared for an emergency. First, make a plan. Call a family meeting to plan for things like how to connect with loved ones after an emergency or your escape route.
3: Payback!
4: I am not fast.
2: Build a kit. When disaster strikes, it's important to have enough supplies to last 3 days. And don't forget the batteries.
4: Low battery.
2: Visit ready.gov/kids for more preparedness tips. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
5: Hello, my name is Kamel Ellis, and I host a show with my co-host, Ms. Lisa Ray, Radio One World Fest Global at YC Radio Studios, located at York College, the City University of New York in Jamaica, Queens. Radio One World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. You can listen to us on the TuneIn app or TuneIn.com and search YC Radio. You can call us even on our hotline at 718-262-5294 as we discuss topics that affect us locally and globally. Don't forget, Radio One World Fest Global airs every second and fourth Thursday at 6 p.m. Eastern Standard Time. Check us out on the TuneIn app or TuneIn.com where you search YC Radio. Call us on our hotline, 718-262-5294 as we discuss issues that affect us globally and locally. Have a good day. See you soon.
6: Okay, what are you wearing right now?
7: Nothing.
6: That's right. So mommy's going to teach you how to dress yourself. Underwear always comes first, name tag at the back, then pants, then shirt. Get the first button in the right hole or you have to start all over. Socks go on first, then shoes, right on right, left on left. With shoelaces, just take the ends, cross them over, switch the loops, the rabbit goes down the hole, pull tight, and you're left with bunny ears. Got it? Why are your pants on your head?
8: Most parenting is hard to do in just 2 minutes. 2 minutes twice a day, making sure they brush their teeth, is easier, and it could help save them from a lifetime of tooth pain. Visit 2min2x.org to find out more. A message from the Partnership for Healthy Mouths, Healthy Lives, and the Ag Council.
9: York College ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA, aur TAP, TAP, aavedan ab khule hain. Aur ab apna aavedan pura karne ka sahi samay hai. जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
10: You're listening to YC Radio and I'm Guru Chris. What up?

0: Yo, what up, what up? It's the Kid Out of War, and y'all listen to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: My grades were bad. I would, like, get D's and C's.
2: I appeared to be doing good at my school life, but if you would see me at home, it would have been a completely different story.
3: I mean, it was just rough focusing on school when your mother is somebody you have to take care of.
4: It got worse and worse and worse throughout the years.
5: There are students who need somebody.
6: They can trust someone, and it could be the first person they've ever trusted in their life.
7: Communities and Schools is lowering America's dropout rate by helping more than 1.3 million kids every year get whatever they need to succeed in school.
4: If something was going on at home, we would go just stop by Miss Liberty's office and talk to her.
2: Communities and Schools vouched for me when everyone else had lost hope.
7: You can help change the picture of education right here in your community and across the nation. Visit communitiesandschools.org.
6: I hear people say we can't save every kid, but I think that we can.
8: York College ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA aur TAP, TAP aavedan ab khule hain aur ab apna aavedan pura karne ka sahi samay hai. जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता. अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें. यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है. त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी. अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें. जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है. आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं. अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें. आज ही अपना 2026 से 2027

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता

0: सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意， 2026至2027 学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放， 现在正是提交申请的最佳时机。 尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往EH04办公室获取快速帮助，或参加FAFSA申请辅导讲座。 我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响，立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。 立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: What up, what up? It's the kid out of war. Shout out to YCRadio.org, voice of today's generation.
3: Women now make up 37% of the workforce, changing their role forever.
4: Harvard Medical School has now opened its doors to new female applicants.
5: The first woman is now in space.
6: The majority of last year's doctorate degrees were earned by women.
7: We've come so far, but our news is changing for the worse. More women die from heart disease and stroke than men, even though it can be prevented. Make a change at GoRedForWomen.org today. Brought to you by the Ad Council and the American Heart Association's Go Red for Women.
8: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
9: I started going cold turkey. Well, at least when I'm in the car.
10: I know I shouldn't do it, but it's so hard to stop. That's why I hide it from myself, so I won't be tempted.
9: I used to do it all the time. I stopped by locking it in my glove compartment.
11: My friend used to do it way too much. Now I turn it off when we're in the car.
10: My solution is simple. I just don't do it.
12: There are lots of ways to stop yourself and others from texting and driving. How will you stop? Tell us at StopTextStopRex.org. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
13: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027 学年的FAFSA 和TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助， 约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您。

0: Yeah.
1: York College के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और York कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो York कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
2: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: This is Cousin Lucy from Mada's Cousin. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Juice, Mom! Juice, juice, juice!
4: Mommy, why are we going to the store? Mom,
3: I want juice.
4: Mom,
3: juice.
5: Your child will have different needs at different stages of life, and that includes the car seat. See, car crashes are a leading killer of children ages 1 to 13. Protect your child's future at every stage of life. Go to safercar.gov/the right seat.
6: A message from the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
7: Hello, everyone. I'm here to tell you all about two of your college's most progressive and engaging programs. I'm talking about the Male Initiative Program and the Women's Center. What both programs have to offer are a wide variety of opportunities assisting students academically and socially. To find out more about us, come to the Male Initiative Program in room 3MO2 or call 718-262-3772. For the Women's Center, in room 3C01, call 718-262-2008. Again, to find out more about us, come to the Male Initiative Program in room 3MO2 or call 718-262-3772. For the Women's Center, in room 3C01, call 718-262-2008. Thank you.
8: Chances are there'll never be an emergency ever again. But just in case, let's talk about a plan.
9: Okay.
8: Who is going to grab the go bag?
9: What's a go bag?
10: It is a bag we do not have that is filled with things we really, really need in an emergency.
9: Guess we won't

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FA

0: El diablo va a un chisme. Y me va Bonnie, Hydrisi. Diablo llora en el guapo.
1: यो कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, फ्लायर पर दिए गए QR कोड

लॉ कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉक कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉक कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉक कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: 克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें।

जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: Hey, this is DJ Mike from Guyana. You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: This is the news. This morning, we are saluting the 2.2 million women who have joined in the war effort. They now make up 37% of the workforce, changing their role forever.
4: The prestigious Harvard Medical School is breaking ground today, opening its doors to new female applicants.
5: Today, little girls all over the world look to the sky, where the first woman is now in space.
6: Military stereotypes are challenged today with the trailblazing promotion of a U.S. female officer to four-star general. It was just announced that the vast majority of last

योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: What's good, y'all? It's your girl, K Goddess, and you are now rocking with YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: I'm in almost every school bus and classroom. You see me around the neighborhood, and you tell me that I'm a pretty good kid.
2: Well, I'm one out of every five children in America, and I'm struggling with hunger.
3: Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help.
4: Every dollar you donate helps provide 8 meals for kids like me.
5: We are Feeding America, brought to you by Feeding America and the Ad Council.
6: Hi, I'm Kenny Williams.
7: And Lisa Ray.
6: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
7: And Lisa Ray.
6: Make sure you listen in on a free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org. The voice of today's generation.
8: 'Cause I ain't no joke.
9: York College के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
10: Dave, what are you doing?
11: Just sending a gift to Dave 2037.
10: Who?
11: Me in the future. I save a little money from every paycheck as a gift to Dave 2037, so he can spend it on things like anti-gravity boots or a hologram Doberman. Something cool like that. I think Dave 2037 deserves it. He worked hard. What are you getting Steve 2037?
10: I guess I was thinking Steve 2037 would just fend for himself.
11: Well, all right, but don't expect to be borrowing my anti-gravity boots.
12: You want to have money in your future? You got to start saving now. Putting some money from every paycheck into a savings account or contributing to your 401k can make a big difference later. Put away a few bucks, feel like $1 million. For free ideas and easy ways to save, go to feedthepig.org. That's feedthepig.org.
11: Hey, let's just hope Steve 2037 doesn't get his hands on a cold time machine, because he is going to come back here and knock some sense into you.
13: This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
14: What's up, world? It's King Hearts. This is YCRadio.org, the voice of today's generation. Y'all already know what it is.

0: और कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉक कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: Rap to you real quick. I wanna enjoy the luxury of like not knowing each other for real. Hold up.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。